0: पाखीवास एफएम समय सूचक यो पाखीवास एफएम को समय हो अहिले बिहान को 7 बजे।
1: श्रोताहरू अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौ देशभक्तिका गीतहरू।

के तपाईँलाई तयारी सुन र असली चाँदीका गहना आवश्यक छ या पुरानो सुन रिफाइन गरी एक नम्बर बनाउनु परेको छ? यदि त्यसो हो भने सधैँ हामीलाई सम्झनुहोस्। मनोकामना सुन चाँदी पसल। कैनपुर छ कैनपुर बजार त्री चोक प्रोपाइटर पदम रसाइली ममता रसाइली। सम्पर्क 9861 37744 र 9813577।

छैन। ल आमालाई खाजा लगाइदे। ठक्कै उसको बाले जस्तो टाउका रुमाल बाँधेर हिँड्छ।

0: खै आएन
1: अनि देउता मानेनन् के हो फगाउनु पर्छ के हो
0: मन्त्र हान्नुपर्छ होला
2: फेरि मैले यता